0: 16 17 साल की भरलार की ही कमाल की
1: लोना बेह मिन्यू हाय मिस्टर खान
0: वेयर डू यू फ्रॉम
1: आई फ्रॉम अ चाइनीज
0: ये दी सगया है मेरा दी बेतु सगया है मिस्टर